0: ये राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे वो भी मिला, यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद उसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो।
0: ओह गॉड, मैं अभी आया।